0: நேரம் 7:45.
1: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके साथ।

0: ரோட இணைந்திருக்கிறோம் மனங்களில் என்றென்றும் முழுமையான கொண்டாட்டத்தோட எங்கள் ஸ்டைல் நிகழ்ச்சியில பாடல்களை கேட்டு ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நிலையத்துல நேரம் 2:20:20.
1: शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते, वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
2: तो ऐसा बोलो ना,
1: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके साथ।
4: वेरी गुड।